भले फरिया रातो चोलो ठमार समयको भले फरिया रातो चोलो ठमा हमेल सिक्री करना पुली सिरमा सिरफुल झमा हमेल सिक्री करना पुली सिरमा सिरफुल झमा धन कुबाला चुल्यो हजुर दिसै रमाइलो हे धन कुबाला चुल्यो हजुर दिसै रमाइलो।